हरनाथ दाओ दाओ प्राण, दाओ अमृत मृत जने, दाओ भीत चित जने, शक्ति अपरिमान हे सर्वशक्तिमान। दाओ स्वास्थ्य दाओ आयु, स्वच्छ आलो मुक्त वायु, दाओ चित्त अनिरुद्ध, दाओ शुद्ध ज्ञान हे सर्वशक्तिमान।